थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: कदा प्रत्यागतवती? प्रातः काले एव। कृष्ण जन्मभूमेः दर्शनं कथम् आसीत्? कथम्? बहु अविस्मरणीयम् इति उत्तरम् आसीत्। तर्हि के के शब्दाः? कुतः, कुत्र, किं, कति, कदा, कथम्, एते सर्वे शब्दाः वयम् अत्र सम्भाषणे श्रुतवन्तः। अस्तु, अत्र भगवान् श्रीकृष्णः कः? भगवान् श्रीकृष्णः एकः अवतारः। अस्माकं दश अवताराः सन्ति, दशावताराः। भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः स्वयम् एव वदति, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवान् वदति, अहं युगे युगे प्रतियुगं सम्भवामि, पृथ्वीम् अवतरामि। इत्युक्ते किम्? तर्हि अहं कृष्णरूपेण, वराहरूपेण, बलरामरूपेण वा आगच्छामि। अस्माकं दशावताराः के? तेषां नामानि सर्वे जानन्ति एव, एकवारं वदामि च। मत्स्यः, कूर्मः, वराहः, नरसिंहः, वामनः, परशुरामः, रामः, कृष्णः, बुद्धः, कल्की च। तो जो श्लोक मैंने अभी कहा वो ऐसा गाते हैं, और ये गीता का श्लोक है। एकस्य श्लोकस्य अर्थं पश्यामः, एक ही श्लोक का अर्थ देखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति, हे भारत यानी हे अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति, अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति, तदा अहम् आत्मानं सृजामि। अत्र अस्ति यदा तदा, क्या मतलब हुआ? जब जब धर्म की ग्लानी होती है, धर्म की ग्लानी यानी धर्म नीचे जाता है, धर्म की अधोगति होती है या धर्म कम हो जाता है, तब हे अर्जुन अहम सृजामि, अहम अवतारम स्वीकरोमि, मैं अवतार लेता हूँ। वैसे ही और भी एक बात बोली है उन्होंने, धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म का उत्कर्ष होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो यहाँ मन में प्रश्न आया होगा, धर्म यानी कौन सा धर्म? न न न, धर्म का वह अर्थ नहीं है। भगवद गीता जो ग्रंथ है न, वो यूनिवर्सल है, सारे विश्व के लिए है। धर्म का अर्थ होता है अच्छा काम, धर्म यानी पुण्य कर्म। मगर जब लोग पुण्य कर्म करना नहीं चाहते, पुण्य कर्म जगत में कम होते जाता है और पाप कर्म बढ़ते हैं, तो भगवान बोलते हैं, मैं खुद की इच्छा से अवतार लेके पृथ्वी पे आ जाता हूँ। संस्कृत सीखने का बहुत फायदा है ना, आपके ध्यान में बहुत सारे शब्द आए होंगे। और दूसरा भी श्लोक है, वो भी एक बार बताऊं उसका अर्थ भी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भगवान ने कहा है, मैं हर एक युगों में अवतार लेता हूँ। किस लिए अवतार लेता हूँ? तो साधुओं का रक्षण करने के लिए, परित्राणाय साधूनां, दुष्कृतानां विनाशाय, जो दुष्कृत्य है, दुष्कृत्य करने वाले लोग है, उनका विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए, यानी लोगों को पुण्य कर्म करने के ओर प्रेरणा देने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। समझ में आया? तो ये श्लोक बहुत बहुत बहुत अच्छे हैं, गीता के बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भगवद गीता के ये दो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत सारे लोग जानते हैं। मगर जब थोड़ा संस्कृत भी जानते हैं तो श्लोकों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आइए वेणु ध्वनि पे संस्कृत सुनिए, संस्कृत सीखिए, संस्कृत बोलिए। धन्यवाद। अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्रपठनं।
1: श्रीगणेशाय नमः।
2: श्रीगणेशाय नमः।
1: वेदान्तवेद्ययज्ञेश
2: वेदान्तवेद्ययज्ञेश
1: पुराणपुरुषोत्तमः
2: पुराणपुरुषोत्तमः
1: जानकीवल्लभश्रीमान्
2: जानकीवल्लभश्रीमान्
1: अप्रमेयपराक्रमः
2: अप्रमेयपराक्रमः
1: इत्येतानि
2: जपन् नित्यम्
1: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
2: मद्भक्तश्रद्धयान्वितः
1: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्
2: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्
1: सम्प्राप्नोति न संशयः
2: सम्प्राप्नोति न संशयः
1: रामं दूर्वादलश्यामम्
2: रामं दूर्वादलश्यामम्
1: पद्माक्षं पीतवाससम्
2: पद्माक्षं पीतवाससम्
1: स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्
2: स्तुवन्ति नामभिर्देव्यैः
1: नते संसारिणो नरः
2: नते संसारिणो नरः
1: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं
2: रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं
1: सीतापतिं सुन्दरं
2: सीतापतिं सुन्दरं
1: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
2: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं
1: विप्रप्रियं धार्मिकं
2: विप्रप्रियं धार्मिकं
1: राजेन्द्रं सत्यसन्धं
2: राजेन्द्रं सत्यसन्धं
1: दशरथतनयं
2: दशरथतनयं
1: श्यामलं शान्तमूर्तिं
2: श्यामलं शान्तमूर्तिं
1: वन्दे लोकाभिरामं
2: वन्दे लोकाभिरामं
1: रघुकुलतिलकं
2: रघुकुलतिलकं
1: राघवं रावणारिं
2: राघवं रावणारिं
1: रामाय रामभद्राय
2: रामाय रामभद्राय
1: रामचन्द्राय वेधसे

0: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. के एल इव्हन धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: खुशी का महत्व. खुशी ताजगी से भर देने वाला एक अनोखा शब्द है खुशी. हाँ हाँ, वास्तव में खुशी जैसी खुराक नहीं. सच पूछो तो ये हर मन की चाह. खुशी स्वस्थ भरपूर अंतकरण की गहरी था और सुखमय जीवन की यथार्थ राह है. खुशी जीवन सौरभ है, शक्ति है और ये जीवन की जीवंतता का प्रमाण है. जैसे मानव में आत्मा ना हो तो उसे मुर्दा कहते हैं, ठीक ऐसे ही खुशी के बिना व्यक्ति तो मरा मरा सा लगता है. इसके बिना तो मानव मृत प्राय हो जाता है, क्योंकि खुशी मानव जीवन का श्वास है. खुशी के बिना तो मानव का कोई अस्तित्व ही नहीं, ना ही कोई मोल. इसके बिना तो वो निरस हो जाता है. सचमुच सदा खुश रहने वाला सभी को कितना प्यारा लगता है, क्योंकि खुशनुमा चेहरा देखते ही मन प्रसन्नता से भर उठता है. चेहरे पर खिले खुशी के पुष्प प्यार मोहब्बत का एहसास कराते हैं और पल भर का प्यार का अनुभव कितना सुकून दे जाता है, जिससे संबंध मधुर हो जाते हैं. सच पूछो तो खुशी जीवन के लिए अमृत के समान है, जिसके बिना तो जिंदगी व्यर्थ है. इसलिए तो हर मानव मन को इसकी तलाश रहती है, और वह जिसे कभी पदार्थों तो कभी वस्तुओं में खोजता है, तो कभी मनोरंजन के साधन या सैर सपाटों में तलाशता रहता है. लेकिन सच तो ये है कि इनसे केवल थोड़े समय की खुशी मिलती है. इसका स्रोत बाहर नहीं, अंदर है. ये अंतर आत्मा की निजी संपत्ति है. अतः इसे बाहरी आडंबरों में खोजते फिरते रहने से भला क्या लाभ. खुशी आत्मिक तृप्ति से ही मिलती है. हमेशा खुश रहना है तो संतुष्टता को अपनाइए. वास्तव में आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन ही खुशी के अविनाशी स्रोत है. मानव और प्राणियों की सेवा और दान से भी खुशियां पाई जा सकती है. इसके विपरीत ईर्ष्या, नफरत, वैर विरोध की भावनाएं इसे नष्ट करती है. तो प्रेम, दया, क्षमा आदि सद्गुण खुशी को बढ़ावा देते हैं. अतः खुशी को अपनाइए और जीवन को खुशहाल बनाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.
0: श्रोतेव, आपण देवाची पूजा करतो, आरती करतो, मंत्र म्हणतो आणि मंदिरात जातो, पण अध्यात्म आपल्याला केवळ पूजा करण्यापुरतेच मर्यादित ठेवत नाही. अध्यात्म आपल्याला स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याची शिकवण देते. आपल्या मनात राग असेल तर तो कमी करण्याचा प्रयत्न करणे, मत्सर असेल तर त्यावर मात करणे, चूक झाली तर ती स्वीकारणे आणि दुसऱ्याच्या यशाचा आनंद मनापासून घेणे ही सुद्धा आध्यात्मिक साधनाच आहे. भगवान श्रीकृष्णांनी भगवद्गीतेत कर्म करण्यावर भर दिला आहे, म्हणून आपण परिणामाची अतिचिंता न करता आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे करत राहिले पाहिजे. आपल्या भारतीय परंपरेत नद्या, पर्वत, वृक्ष, प्राणी आणि पंच महाभूतांविषयी आदराची भावना आहे. यामागे निसर्ग आणि मानव यांचे परस्परावलंबित्व समजून घेण्याची शहाणपणाची दृष्टी आहे. म्हणून झाडे लावणे, पाणी वाचवणे, प्लास्टिकचा वापर कमी करणे, ऊर्जा वाचवणे आणि परिसर स्वच्छ ठेवणे ही देखील समाजसेवा आणि निसर्गसेवा आहे. देवाची पूजा ही मंदिरात करा, पण देवाने निर्माण केलेल्या निसर्गाचे रक्षण मात्र आपल्या कृतीतून करा. हे होते आजचे आध्यात्मिक विचार आणि आता एक छानसं भक्तिगीत ऐकत राहू. धोनी 90.4 FM KLE कणसू, भक्तिमय सकाळ.

0: रेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रूपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के पीटूएम लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रूपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेन देन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेन देन पर कोई मासिक सीमा, लेन देन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
4: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती

0: तौर पर जरूरी हो गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
5: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के दिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्रीय गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने

0: भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ते के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार

0: समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM के LE कनसू। पहिल्यांदाच हुबळी मध्ये नवीन व युवा उद्योजक स्टार्टअप व्यावसायिक तसेच स्वयंरोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक सुवर्ण संधी। तुमच्या कल्पनांचे उत्पन्नामध्ये रूपांतर करा। तुमच्या स्वप्नातील व्यवसायाचा भक्कम पाया घालण्यासाठी आणि उद्योजकीय कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष एक दिवसीय स्किल डेव्हलपमेंट कार्यशाळा एम्पावर 365 कल्पनेपासून कंपनीपर्यंत रविवार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2026 रोजी हुबळी येथे। यशस्वी आणि फायदेशीर उद्योजक होण्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकसित करण्याची संधी गमवू नका। आजच आपले नाव नोंदवा। नोंदणीसाठी संपर्क 9513519666। गिकोना, सक्सेस स्ट्रॅटेजी।
2: KLE डॉक्टर प्रभाकर कोरे आस्पत्रेय KLE फर्टिलिटी सेंटर बेळगावी स्टेट ऑफ द आर्ट IVF फैसिलिटी ओंदिगे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी एंड्रोलॉजी एंडोस्कोपी गळिगे एक्सक्लूसिव OPD 3D लैप्रोस्कोपि हागू हिस्ट्रोस्कोपि ई एल्ला सेवेगळ जोतेगे नुरित तज्ञ वैद्यर तंड KLE IVF सेंटर बेळगावियल्लि लभ्य। हेच्चिन माहितिगागि संपर्किसि KLE फर्टिलिटी सेंटर बेळगावी OPD नंबर 97 शरावति सेकेंड फ्लोर KLE डॉक्टर प्रभाकर ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ನೆಹರು ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312551530 ಮತ್ತು 08312473777 ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ 1530

केली सोसाइटीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्योर फॉर ऑल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस डॉक्टर्स एंड अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ केली सोसाइटीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर नेहरू नगर बेलागावी कॉल 08312 47377

0: Attention all aspiring health leaders. Here's an exciting opportunity from the School of Public Health under KLE Academy of Higher Education and Research, Belagavi. School of Public Health invites you to join the future public health leaders through its integrated BPH plus MPH program, a five-year program open to students from all backgrounds. If you've completed pre-university college in science, commerce or arts, you're eligible to apply. And if you've completed a diploma, you can enter directly into the second year through lateral entry. Already a graduate? You're invited to join our two-year MPH program. You'll study at a NAC A+ accredited university with world-class campus and infrastructure. You'll benefit from strong field-based learning and community engagement with multidisciplinary faculty. And you'll gain hands-on experience at the CAHED Health and Demographic Surveillance Site with national and international collaborations including TJU USA, Umeå University Sweden and more. Plus funded research projects supported by the NIH, ICMR and UNSW Australia. And the career opportunities are endless. Government and public sector roles, health departments, research centers, academics and even opportunities to pursue a PhD. So don't wait. Apply online today at kahed.edu.in. For more information, visit CAHED JNMC Campus, Nehru Nagar, Belagavi or call 0831-244-444, extension 4327.
1: पहिल्यांदाच हुबळीमध्ये नवीन व युवा उद्योजक, स्टार्टअप व्यावसायिक तसेच स्वयंरोजगार सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही एक सुवर्ण संधी. तुमच्या कल्पनांचे उत्पन्नामध्ये रूपांतर करा. तुमच्या स्वप्नातील व्यवसायाचा भक्कम पाया घालण्यासाठी आणि उद्योजकीय कौशल्य विकसित करण्यासाठी विशेष एक दिवसीय स्किल डेव्हलपमेंट कार्यशाळा Empower 365, कल्पनेपासून कंपनीपर्यंत. रविवार दिनांक 18 ऑक्टोबर 2026 रोजी हुबळी येथे. यशस्वी आणि फायदेशीर उद्योजक होण्यासाठी आवश्यक कौशल्य विकसित करण्याची संधी गमवू नका. आजच आपले नाव नोंदवा. नोंदणीसाठी संपर्क 9513519666. गिकोना सक्सेस स्ट्रॅटेजी. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वेणु धोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू. मैं हूं आपके साथ मनीषा और आज एक विशेष प्रोग्राम आपके लिए लेके आई हूं, जिसमें हम सुनेंगे एंजाइटी और उस पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या रहेगी. इसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जेसिका मोंटेरो, जो एक एसोसिएट प्रोफेसर एंड होम्योपैथिक कंसल्टेंट है केएलई होम्योपैथिक कॉलेज बेलगावी यहाँ पे. तो मैडम, वेणु धोनी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद मैडम.
1: आज हम एंजाइटी के ऊपर बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि एंजाइटी होती क्या है.
2: सबसे पहले जो भी आज साथ जुड़े हैं उन सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार. आज का विषय जो है वो है एंजाइटी. ये एंजाइटी होता क्या है? कभी कभार चिंता का अनुभव करना एक सामान्य बात. अति चिंता होना, घबराहट होना जो हद से ज्यादा होता है, जो कंटिन्यूस वरिंग हम जो बोलते हैं, नेगेटिव विचार जो आते हैं, इस चीज को जो कंटिन्यूसली एक मनुष्य अनुभव करता है, उस चीज को हम एंजाइटी बोलते हैं. तो ये एंजाइटी चीज जो है वो अचानक एकदम बहुत ज्यादा प्रमाण में हो सकता है. कंटिन्यूस एक मनुष्य को अपने जो दैनिक ये जो होता है कामकाज में वो बाधाएं डाल सकती है.
1: डेली
2: रूटीन वर्क में, फॉर एग्जांपल अभी एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, उन लोगों को एंजाइटी जब होता है वो अपने स्कूल के डेली एक्टिविटीज में उनको प्रॉब्लम होता है. कामकाज जब जो हम लोग जाते हैं उसमें डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो जाता है. सो दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूस वरिंग, अति विचार होना, नेगेटिव विचार होना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंजाइटी.
1: ओके, तो ये एंजाइटी तो आपने एक्सप्लेन कर दी, बट कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसे सोचने लगते हैं कि हमारा स्वभाव ही ऐसे है. फॉर एग्जांपल अगर ओवरथिंकिंग की हम बात करें तो हमारा स्वभाव ही ऐसे है कि किसी भी चीज को हमें ज्यादा सोचने की आदत रहती है या फिर स्वभाव में ही वैसे रहता है, उसको हम एंजाइटी से रिलेट कर सकते
2: हैं. हाँ, ये भी सही है जो आप बोल रहे हो. दिस इज पर्सनैलिटीज. थोड़ी जो पर्सनैलिटीज है वो बहुत ज्यादा वरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होते हैं, बट वहाँ पे जो होता है योर रूटीन एक्टिविटीज जो है वो उसमें बाधाई नहीं आती है. एंड ये जो एंजाइटी का हम जो परिभाषा देते हैं, इट इज WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको स्वास्थ्य

0: का परिभाषा देता है तो उस परिभाषा में होता है ना बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य जब एक मनुष्य का होता है तब हम उसको बोलते हैं कंप्लीट हेल्थ।
1: ओके,
0: जब ये एंजाइटी होती है तो ये एक इंसान को पता चलता है कि मेरे में मानसिक स्टेबिलिटी नहीं है, मुझे तकलीफ हो रही है, वो अनुभव हो सकता है बट अवेयर नहीं रहते लोगों को, उसकी अवेयरनेस कम होता है, सो प्रोबेबली वो अवेयर नहीं होते हैं एंड दैट इज व्हाट हम लोग इसको पर्सनालिटी में कभी कभार उसको मर्ज करते हैं।
1: ओके,
0: एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग एंजाइटी को डिफ्रेंशिएट हम जब करते हैं, ये जो बहुत ज्यादा विचार करना, ये अगर 4 से 6 महीने तक कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअसली फॉर ऑलमोस्ट 4 to 6 months अगर एक इंसान को ये तकलीफ होती है तो वी कैन देन कॉल इट एज एंजाइटी।
1: अच्छा,
0: सो इसका जो डायग्नोस हम जब करते हैं एंजाइटी, तो इसको कंटिन्यूअसली ये जो तकलीफ होती है वो 4 to 6 months ड्यूरेशन तक होती है, फर्स्ट इसकी जो परिभाषा होती है एंजाइटी की। सेकेंड इम्पोर्टेंट है जो डे टू डे एक्टिविटीज में वो बाधाएं डालना स्टार्ट करती है, उनको तकलीफ होने लगती है, वेर एज इन पर्सनैलिटी ये उनकी पर्सनैलिटी है जब बट वो अपना काम करते हैं दे आर एबल टू कंटिन्यू डूइंग इट। सो हम लोगों को इसको ये अंतर के द्वारा समझ सकते हैं कि ओवर थिंकिंग पर्सनैलिटी थोड़ा सा अलग होता है, बट यस ओवर थिंकिंग पर्सनैलिटी ये लोग ज्यादा रिस्क में हो सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एंग्जाइटी का जो ये होना
1: शिकार बनना
0: हाँ, इन लोगों में थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
1: ओके,
0: इन टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़।
1: अच्छा, तो ये डिफरेंस रहेगा फिर, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे मान लेते फिर कि हाँ हमारा स्वभाव ही इस तरह का है तो उसको क्या बीमारी का नाम हम नहीं दे सकते हैं
0: बट दैट्स व्हाट आई सेड कि ये अवेयरनेस होना कि एक ऐसी चीज है एंग्जाइटी है, जब हमको पता चलता है देन भी हम लोगों को उसका मैनेज करना या तो फिर उसको डिफरेंशिएट करना पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी अगर ओवरथिंकिंग की है अगर हम उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि कल जाके वो एंजाइटी में बदल सकता है। सो दिस अवेयरनेस इज रियली इम्पोर्टेंट।
1: तो ये जो एंजाइटी होती है ये किस किस को हो सकती है?
0: ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है कि एंजाइटी किसी को भी हो सकती है।
1: अच्छा,
0: बच्चों से लेके मध्यम वर्ग से लेके बूढ़ों तक सबको ये एंजाइटी, सब हमारे लाइफ में अराउंड 4 to 5% ऑफ लोग एंजाइटी के ये दौर से गुजर चुके हैं।
1: अच्छा।
0: बट रिसर्च कहता है कि हर एक 100 लोगों में 100 लोगों में 5 लोगों को तो एंजाइटी का प्रॉब्लम, जो हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं, तो वो इस चीज एंजाइटी का शिकार हो सकता है। सो सभी में देख सकते हैं हम लोग, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको ये एंजाइटी की बीमारी या तो फिर ये तनाव हो सकता है।
1: किसी चीज से डरना या फिर कौन सा तो काम करने के लिए हमें थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होना, ये सभी एंजाइटी में आता है या फिर कुछ और भी टाइप्स है इसके?
0: एंजाइटी 3 या 4 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंजाइटी है बट जो कॉमन है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। एक जो होता है वो है जनरलाइज्ड एंजाइटी। जनरलाइज्ड एंजाइटी या इसका मतलब होता है कि किसी चीज की भी एंजाइटी या किसी चीज का डर होना, अति विचार होना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक मनुष्य को अगर एक चीज के बारे में अगर 100 विचार आता है, मुझे यहाँ से अभी कल सुबह एक एग्जाम के लिए जाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसके बारे में सोचना एक सामान्य चीज है, कोई भी व्यक्ति इसके बारे में सोचेगा बट उसको सोचने का उसका जो सोच है वो 10 गुना हो सकता है। 10 विचार उसके बारे में कि मैं कल कैसे उठूं, कैसे जाऊं, वो जो है वो 10 विचार आएंगे बट जो एंजाइटी होती है वो उसके बारे में वो 100 विचार आ जाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। सो इसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी। वो किसी चीज के बारे में हो सकता है, शारीरिक हमको प्रॉब्लम्स हो जाए, अपने हेल्थ के बारे में हो सकता है, या तो फिर गृहस्थी के प्रॉब्लम्स हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो होता है आस्तिक, या तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या तो फिर बच्चों में स्कूल जाना, पढ़ाई, कंसंट्रेशन। सो जनरलाइज्ड होता है। कभी कभी जनरलाइज्ड एंजाइटी इस छोटी छोटी चीज में होता है कि मैं अभी जाके दोपहर में क्या खाना बनाऊं, उस चीज का भी एंग्जाइटी होता है। अभी मुझे लेके ऑफिस जाना है, अब मैं ऑफिस सही टाइम पे पहुंचू या ना पहुंचू उस बारे में भी एंग्जाइटी होता है। इन लोगों को ऑफिस जाना ही बहुत बड़ी चीज होती है, सुबह उठ के ऑफिस पहुंचना ही उनके लिए 100 चीज। हम लोग उठते हैं सोचते हैं कि भाई मुझे बस मिलेगा या तो फिर मैं कार ठीक तरह से पहुंच पाऊंगी, 100-10 बार हम उसके बारे में सोच देते हैं एंड वी आर डन विद इट। बट इन लोगों को इसके बारे में ऑफिस पहुंचने तक बस 100 चीजें

0: उनको दिमाग में आती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नेगेटिव. मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे लेट होगा, मैं मेरा काम नहीं कर पाऊंगी. सो दिस इज जनरलाइज्ड एंजाइटी. और एक एंजाइटी होता है उसको हम बोलते हैं सोशल एंजाइटी.
1: ओके,
0: सोशल एंजाइटी होता है जहाँ पे हम दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट, उसमें वो डर होता है कि अति चिंता होता है कि मैं दूसरों के साथ में बात कर पाऊँ या नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि बच्चों में अगर कोई एग्जाम है मैं जाके किसी को मिल पाऊंगा या नहीं, टीचर से बात कर पाऊंगा या नहीं, ऑफिस में अगर इंटरव्यू देना है, तो ये लाइक यू नो सोशल एंजाइटी, ये लोगों से बचते हैं, इनको लोगों के पास और लोगों से मिलना जुलना वो तकलीफ होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज सोशल एंजाइटी.
1: अच्छा,
0: एक और एंजाइटी होता है वो है सेपरेशन एंजाइटी. ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है जहाँ पे वो अपने माता पिता से दूर होने पे उनको वो एंजाइटी होती है, या तो फिर हम लोग जब हम काम पे जाते हैं तो घर से हम लोग दूर जाते हैं फॉर द होल डे, लेकिन जब हम जाते हैं ये सेपरेट होना जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा एंजाइटी जनक होता है. बच्चों में फॉर एग्जाम्पल माता पिता जब ऑफिस जाते हैं उनको लगता है कि वो वापस आएंगे या नहीं, अभी ये जा रहे हैं, अब कोई गांव जाता है. सो जब ये सेपरेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये बचपन में स्टार्ट होता है.
1: अच्छा,
0: एंजाइटी सेपरेशन एंजाइटी जो है जो वो बढ़ते बढ़ते इट वुड टर्न इनटू सेपरेशन एंजाइटी. और बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंजाइटी है. एंजाइटी जो बहुत ज्यादा हो जाता है इट टर्न्स इनटू फियर, फियर ऑफ प्लेसेस, पब्लिक प्लेस में जाने का एंजाइटी, जा नहीं पाते हैं, हाइट ऊंचाई का एंजाइटी. तो अगर एक इंसान को ऊंचाई का एंजाइटी होता है तो आप सोचिए अगर उसका घर सातवें या आठवें माला पे है. सो ये इनको डेली एक्टिविटीज में अफेक्ट करता है, वो डेली ऊपर ऊंचाई पे रहता है तो उनका एंजाइटी बढ़ जाता है. अगर किसी को क्लोज्ड स्पेस छोटी सी जगह पे एंजाइटी होना स्टार्ट होता है, सो सोचो आपको डेली आपके ऑफिस में लिफ्ट लेके जाना होता है, तो अगर वो ऑफिस में लिफ्ट लेके जाते वक्त वो छोटी जगह पे, देन यू स्टार्ट विद दिस एंजाइटी प्रॉब्लम्स. सो ये बहुत टाइप के एंजाइटीज होते हैं विच वी क्लासिफाई डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स. जो हमको सिम्टम्स दिखते हैं सो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं या टाइप्स ऑफ एंजाइटी.
1: अच्छा, जैसे आपने जनरल कुछ बातें बताई उसको अगर हम ध्यान में रखें तो उसके क्या सिम्टम्स रहेंगे एग्जैक्टली?
0: या सिम्टम्स में सिम्टम्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत उसके कॉजेस के बारे में बताना चाहूंगी कि एंजाइटी होता क्यों है. हमने देखा है कि एंजाइटी होता क्या है, हमने देखा है एंजाइटी किस में होता है, किस प्रकार के एंजाइटीज है, ये क्यों होता है. ये होता इसलिए है, एक तो जेनेटिक मतलब फैमिली में थोड़े लोगों को ये फैमिली में जैसे डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम होता है, ये देखा गया है कि एंजाइटी एक जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है. ये महत्वपूर्ण है, बट इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स से उत्पन्न होता है, जो लाइक यू नो एक्सटर्नल कॉजेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सो थोड़े फैक्टर्स जो हो सकते हैं इट कुड बी लाइक यू नो हार्मोनल या केमिकल्स. हमारे बॉडी में थोड़े केमिकल्स है जैसे सेरोटोनिन जो अपने मूड हमारे बॉडी को काम रखने में सहायता करते हैं. अगर ये इस केमिकल्स की ऊंच नीच होती है या कमी होती है तो ये एंजाइटी की लक्षण पैदा करता है. सो जो केमिकल्स है जो हार्मोन्स है अगर इसका जो संतुलन बिगड़ जाएगा तो उन मरीजों को या उस टाइप के लोगों को एंजाइटी का प्रॉब्लम्स हो सकता है. नेक्स्ट इज कोई दर्दनाक अनुभव हुआ हो बीते कल में या तो फिर बचपन में कोई दर्दनाक अनुभव हुआ होगा तो उससे एंजाइटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है एंड विच कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग. इसकी गति बढ़ते जाती है. सो एक दर्दनाक अनुभव से भी एंजाइटी हो सकती है. देन इट कुड बी लाइक अगर हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर पे हमारे बच्चों के माता पिता जो खुद एंजाइटी के शिकार है तो बच्चे उनको देखते हैं कि हर एक छोटी चीज में मेरी माता या पिता बहुत ज्यादा एंग्शियस है, तो उनको ये रूटीन हो जाता है, वो ये ऑब्जर्व कर करके ये एंजाइटी का प्रॉब्लम्स उनमें स्टार्ट हो सकता है. सो दीज आर द कॉजेज लाइक यू नो जो एंजाइटी हो सकता है. या तो फिर कोई तनाव होता है, स्ट्रेसफुल लाइफ हमारे जो आजकल के भागदौड़ के लाइफ में है, तो उससे मे बी वर्क प्लेस स्ट्रेस तनाव ऑफिस में, तनाव घर पे, रिलेशंस में अगर तनाव होता है, जैसे ये कंटिन्यू होता है, इसमें लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो नॉर्मली जब एक तनाव

0: होता है, एंजाइटी इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम, एंजाइटी से ही शुरू होता है। बच्चों में जब माता पिता एक लक्ष्य रखते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स जब हम बोलते हैं कि हमको वो करना ही है, जब हमको लगने लगता है कि वो करना है बट इट इज अनरियलिस्टिक, तो एंजाइटी हो जाता है। हम बच्चों पे जब दबाव डालते हैं लेकिन कि ये करना है, सो वो बच्चों को लगता है कि मुझ में ये क्षमता नहीं है बट मुझे वो करना है। सो व्हेन वी सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंजाइटी हो सकता है। सो ये सब होते हैं कारण कि एक मनुष्य को एंजाइटी ट्रिगर करने, एंड अगर हम इसके बारे में अवेयर ना हो, अगर हम इसको एक्सेप्ट ना करें, या तो फिर ये चीज होती है, ऐसी कोई चीज है एंजाइटी, हमको पता ना हो, सो ये बढ़ते बढ़ते मानसिक तनाव बढ़ जाती है एंड समटाइम्स बहुत गहरी प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं।
1: अच्छा,
0: सो दिस इज द कॉज ऑफ एंजाइटी। अब आपने जो पूछा था व्हाट आर द सिम्टम्स या इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, एंग्जाइटी के लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं। ये हो सकते हैं शारीरिक लक्षण एंड मानसिक लक्षण।
1: अच्छा,
0: ओके। सो जो मेंटल सिम्टम्स जो हम बोलते हैं या तो फिर मानसिक लक्षण हम बोलते हैं, ये है अति घबराहट होना इज वन ऑफ द सिम्टम।
1: ओके,
0: बहुत ज्यादा कंटिन्यूस इनका दिमाग कभी साइलेंट ही नहीं रहता। कंटिन्यूस एक साइकिल जैसे होता है, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ थॉट्स बॉम्बार्ड होते रहते हैं। इन लोगों को बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। कोई चीज करने की घबराहट, वो एक इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है। नेक्स्ट इज नींद ना आना, भूख ना लगना, पसीना छूटना, हृदय में लाइक पाल्पिटेशन जो होते हैं हम बोलते हैं धक-धक होना, धमाका त्रास होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये सब जो होते हैं सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी बोल सकते हैं। इसमें बच्चों में या तो फिर हम जो काम कर रहे हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ना होना, ध्यान ना लगना, बिकॉज दिमाग में कोई और चीज होता है, सो कॉन्सेंट्रेशन कम होना, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी।
1: ओके, तो डॉक्टर मुझे अभी सभी मतलब रीजन पता चले कि क्यों होता है, सिम्टम्स क्या रहते हैं वो भी आपने बता दिया, किसको होगा वो भी समझाया, तो ये ना हो करके हम ऐसे कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं या फिर कैसे मैनेज करें इसको?
0: ये जो मैंने सिम्टम्स आपको जो बताए, ये जो कॉमन सिम्टम्स मैंने बताए हैं, ये सिम्टम्स जो है वो सभी सिम्टम्स एक में नहीं होते हैं।
1: करेक्ट,
0: एक को बस रिलैक्स ही नहीं रह पाते हैं। ये रिलैक्स न होने की एक सिम्टम है, उनमें
1: कुछ अलग रहे,
0: हाँ शारीरिक। सो जरूरी नहीं है कि सभी सिम्टम्स एक ही इंसान में पाए जाए, बट दे आर नेवर रिलैक्स्ड। ओके, सो अभी जब हम इन सिम्टम्स के बारे में बात किए हैं, ये हो रहा है, सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोग एंग्जाइटी के बोलते हैं, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, इट हैज टू बी अवेयरनेस, जागरूक होना। जो आज हम ये टॉक कर रहे हैं, ये एक प्रकार का मैनेजमेंट है एंग्जाइटी का, जो हम जागरूक लोगों को कर रहे हैं, वो खुद जागरूक होना इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। जागरूक होना काफी नहीं होता है, इसके बारे में एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये मुझे प्रॉब्लम है या मेरे घर वालों को ये प्रॉब्लम है, ये हम लोग एक्सेप्ट करना इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। एंग्जाइटी ऐसी चीज है जो सामान्य लोगों में पाई जाती है, बट इट इज ऑल्सो समथिंग विच इज ट्रीटेबल, 100% ट्रीटेबल है, एंड मोस्ट ऑफ द मध्यम वर्ग जो सिम्टम्स है, बस ये टेक्निक्स यूज किए विदाउट इवन एनी मेडिकेशन, हम अगर ये अवेयर हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो इट इज पॉसिबल कि ये सिम्टम्स कम्प्लीटली ट्रीटेबल हो। सो जब हम लोग ये अवेयरनेस या एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, देर आर सर्टन टेक्निक्स विच वी कैन यूज, सर्टन वेज हम लोग जैसे इसको मैनेज कर पाए, लाइक अगर आपको पता चल रहा है कि या आपके घर वालों को किसी को एंग्जाइटी है, पहले इनको इस चीज को हम लोगों को ये करना है कि भाई मुझे एंग्जाइटी है, वो अपने आप में वो अवेयरनेस ये हो जाएगा कि उसको हम लोग को पहचानना है। कभी कभी जस्ट घबराहट होती है, तो घबराहट हो रही है ये कोई मेडिकल रीजन है? अच्छा, मैं ये और एक बताना भूल गई कि एंजाइटी जो है कोई मेडिकल कारण के वजह से भी हो सकता है, लाइक थायराइड प्रॉब्लम्स, हृदय प्रॉब्लम्स, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, इनके लक्षण में भी एंजाइटी होती है। लाइक अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है तो उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो है एंजाइटी, ये किसी मेडिकल प्रॉब्लम के वजह से हो रहा है, राइट? तो ये

0: लोगों को डिफरेंस ये जब पता चलेगा कि मुझे एंजाइटी है क्योंकि मुझे थायराइड है, तो ये जब मुझे पता चलेगा तो उसका मैनेजमेंट अलग होगा कि मुझे मेरे मेडिकेशंस लेना या तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना है ताकि मेरे सिम्टम्स आर टेकन केयर ऑफ लाइक. बट व्हेन वी नो कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे धकधका हो रही है, आई गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, एक ECG या छाती पट्टी हम निकालते हैं और उसमें सब नॉर्मल है, बट स्टिल मुझे ये घबराहट हो रही है. नाउ मुझे अवेयर, मुझे जागरूक हो गया है कि आई एम हैविंग एंजाइटी. तो ये जब होता है अपने घर वालों को जब पता चलता है, इसमें से 50% ऑफ द टाइम्स और 50% हमारा मैनेजमेंट, वी कैन मैनेज इट बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट इट. ये एक होता है. नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन टेक्निक्स लाइक यू नो मेडिटेशन करना. मेडिटेशन जब करते हो यू आर जस्ट रिलैक्सिंग योरसेल्फ. जब ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं लाइक मेडिटेशन, योगा, दीज आर सम थिंग्स जो हमको एंजाइटी को मैनेज करने में हेल्प करता है. एक और टेक्निक है लाइक अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. अब मुझे अगर ऑफिस जाने में तकलीफ होती है या घबराहट होती है, टाइम में पहुंचू या ना पहुंचू, तो टाइम मैनेजमेंट अगर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे कि आधा घंटा पहले ही पहुंच जाओ, सो दैट यू आप उस जो फेज है उसको आप कम कर सकते हो जो एंजाइटी के सिम्टम्स है. सो टाइम मैनेजमेंट या तो फिर देयर इज अनदर टेक्निक लाइक जर्नलिंग हम बोलते हैं, लिखित. जो मुझे अगर लगता है कि मुझे बहुत सारे विचार आते हैं, मुझे किसी बात का चिंता होती है, उसको लिखते रहना. वो उस चीज से क्या होता है, यू आर मेकिंग योर सेल्फ अवेयर अगेन और तुमको वो ये नियंत्रित, तुम अपने विचार को नियंत्रित कर पाते हो. सो जर्नलिंग इज वन ऑफ द टेक्निक जहाँ पे आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हो. देन यू हैव टू, देर आर सर्टन लाइक यू नो ड्रग्स या मेडिसिन जिससे आप को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकते है, या तो फिर लाइक यू नो आप अल्कोहल या कोई मेडिसिन ड्रग्स वगैरह लाइक यू नो इफ यू टेक. सो इन दिस लाइक यू नो हमारे जो नॉर्मल पब्लिक है उनमें अल्कोहल इज समथिंग लाइक यू नो विच इज वेरी कॉमन, तो आप अल्कोहलिक का सेवन कम करें. सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू लाइक यू नो मैनेज योर एंगजाइटी. गेटिंग इनफ स्लीप, दैट इज कि आप सही मात्रा में अपने बॉडी को रिलैक्स करें. सो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, सो आपकी बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए वो अगर मिल जाएगा तो प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द टेक्निक की आप एंजाइटी को कम कर पाएंगे. हेल्दी डाइट लेना, ये सब जो है टेक्निक्स और सब जो प्रैक्टिसेस है उससे हम लोग एंजाइटी को मैनेज कर पाते हैं अपने लेवल पे जो मध्यम लेवल तक है. बट अगर ये जो इसके लक्षण बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो भी हमको प्रोफेशनल हेल्प, एक्सपर्ट की हेल्प जरूरी होती है, जहाँ पे साइकोथेरेपी जो थेरेपी होती है वो हमको हेल्प करेगा कि देयर इज टेक्निक्स लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है. ये जो सब टेक्निक्स होते हैं इसमें से हम लोगों को बहुत सारा फायदा हो सकता है. एक और चीज इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एंजाइटी बहुत सारे जनों को या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक मानसिक बीमारी है, ये एक स्टिग्मेटाइज्ड हो जाता है. इसको कॉमन, ये इसको बहुत ज्यादा ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको बहुत ज्यादा जैसे हमको बुखार आता है, जुकाम होता है, ऐसे ही एंजाइटी होता है. ये हम लोग अगर एक्सेप्ट करके इसको स्टिग्मेटाइज करना कम करते हैं और जब हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वो होता है कि मध्यम वर्ग के सिम्टम्स हो या तो फिर बहुत ज्यादा सिम्टम्स जब आपको होता है कि यू आर कम्प्लीटली लेकिन नो कुछ कर ही नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ दिस, तो ये जब होता है तो आपको पहचानना है आपके घर वालों में ये प्रॉब्लम्स है, ये पहचानना है एंड प्रोफेशनल हेल्प जैसे साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट एक्सपर्ट्स की हेल्प जब आप लोगे. सो लाइक आई सेड, अगर केमिकल्स के वजह से ये होता है तो सम मेडिसिंस हेल्प होता है, थेरेपीज है जो एक्सपर्ट्स जब आपको हेल्प करेंगे सो दैट इज रियली बेनिफिशियल कि हम लोगों को इस चीज या इस तनाव से हम लोग मुक्त हो पाए.
1: अच्छा, तो इन सब में होम्योपैथी का रोल कैसे रहेगा?
0: अभी होम्योपैथी का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि होम्योपैथिक ऐसा एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जहाँ पे परिपूर्णता का स्ट्रेस होता है. एक इंसान को हम होलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं. अगर कोई तनाव है या तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है उसको एक होलिस्टिक अप्रोच, ना बल्कि बस इसको घबराहट हो रही है या तो फिर इसको पसीना छूट रहा है एंड इसको कोई मेडिसिन दे दे, ये क्यों हो रहा है, तो ये होलिस्टिक अप्रोच होम्योपैथी में बहुत महत्वपूर्ण है.

0: एक और महत्वपूर्ण अप्रोच होम्योपैथी का है, वो है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, दैट इज व्यक्तिगत उपचार। ये दो चीज है जो होम्योपैथी को दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन से डिफरेंशिएट करता है। जब एक पेशेंट या मरीज होम्योपैथ कंसल्टेंट के पास आता है तो उस चीज को व्यक्तिगत रूप में देखा जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, उसका मूल कारण क्या है। एक आधा चीज अगर एक इंसान को परेशान कर रहा है तो इसका मूल कारण क्या है। मे बी कुछ तनाव है, या तो फिर कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो, या जो भी है, वो तनाव या उस चीज की मूल कारण ढूंढने में होम्योपैथी बहुत ज्यादा, या तो फिर द अप्रोच ऑफ होम्योपैथी इज उसका रूट कॉज, उसके भीतर छुपे हुए है कि क्या कारण पता लगाने में बहुत ज्यादा फोकस होता है होम्योपैथी में। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर को पता चलता है कि इसका मूल कारण क्या है, पेशेंट को इस दौरान अवेयर होता है कि इस चीज से मुझे तकलीफ हो रही है। सो हम लोग साइकोथेरेपी में टॉक थेरेपी भी बोलते हैं। सो जब इस चीज के बारे में बात करते हैं, इस चीज के बारे में अवेयर होते हैं, और बहुत सारे चीज में हम देखते हैं कि ऐसे ये एंजाइटी या मानसिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हम बात नहीं करते हैं, ये पेशेंट्स अपने आप में दबा के रखते हैं, ये किसी को, उनको वो डर बैठता है कि मैं किसी को बता पाऊं या कोई मुझे समझ। तो ये जब होम्योपैथी के पास आते हैं तो हमारा वो प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग या ये जो अप्रोच है, जो हम पेशेंट से वो चीज पूछते हैं या बोलते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो किसी से बात ना कर पाए, या तो फिर वो डॉक्टर से जो उनका प्रॉब्लम है शेयर करेंगे। सो दिस ऑल्सो साइमल्टेनियसली वो पेशेंट की जो सप्रेस्ड सिम्टम्स है, या तो फिर किसी को न बोलने वाले जो फेज है, वो होम्योपैथी या होम्योपैथी कंसल्टिंग के द्वारा उत्पन्न या बाहर आता है। सेकेंड इज, हमारे पास रेमेडीज जो है वो स्पेसिफिक रेमेडीज है। लाइक अगर किसी को ऊंचाई की घबराहट होती है, या तो फिर एंजाइटी होती है, उसके लिए हमारे पास रेमेडीज है। पब्लिक स्पीकिंग की कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी चीज को जाके बाहर लोगों में बात करना, स्टेज पे जाके बाहर बात करना, ऐसे जो चीज है स्पेसिफिक चीजों के लिए, स्पेसिफिक एंजाइटी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। सो जो कोई भी होम्योपैथी या कोई और सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जब इसका अवेयरनेस हो के हम प्रोफेशनल हेल्प सीख करेंगे, सो बहुत ज्यादा फायदामंद होगा। एंड ये हमको आगे जाके जो सिम्टम्स डिप्रेशन या बहुत तीव्र मानसिक रोग में जो बदल सकते हैं, उससे हमको बचाव हो पाएगा। सो दिस इज होम्योपैथिक इज एन कम्प्लीट इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, और हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो इसका फायदा मिल गया है। सो लाइक यू नो, फॉर एग्जांपल, अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई का प्रॉब्लम हुआ है, सम स्पेसिफिक रेमेडीज जब हम देते हैं उनको, वो प्रॉब्लम से एटलीस्ट उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। सो दिस इज एन होलिस्टिक अप्रोच, जहाँ पे पेशेंट अवेयर हो जाएगा, पेशेंट एक्सेप्ट करेगा, एंड द मेडिकेशंस आर रियली हेल्पफुल। सो इसका लाभ आप होम्योपैथिक कंसल्टिंग द्वारा ले सकते हैं। हमारे ओपीडी नंबर 5 जो मेन के लिए प्रभाकर कोड़े हॉस्पिटल नेहरू नगर है, वहाँ पे मंडे टू सैटरडे ओपीडी नंबर 5 में होम्योपैथिक एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स अवेलेबल है, जो आपको अगर इस चीज की तनाव से आप गुजर रहे हो तो यू कैन अप्रोच देम।
1: ओके,
0: बसवंत कुर्ची में हमारा नया हॉस्पिटल डेवलप हो रहा है, जहाँ पे एक वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स अवेलेबल है। एंड राइट नाउ होम्योपैथिक कॉलेज जो येल्लू रोड के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज 4th फ्लोर पे है, वहाँ पे ओपीडीज अवेलेबल है। सो इस सब सेवाएं जो होम्योपैथिक कंसल्टेंट्स द्वारा उपलब्ध है, मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स उसका लाभ उठाए, और हम जो ये आज का टॉक है, इसमें से हम जो जागृत और अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं लोगों में, कि आपको ऐसे जो लक्षण अगर लगते हैं, सो जो भी थोड़े टेक्निक्स, अगर वो माइल्ड सिम्टम्स है या मध्यम सिम्टम्स है, अगर आपको हो सकता है तो ये जो टेक्निक्स हमने बात की है उसके बारे में आप यूज करके उसको कम कीजिए, या तो फिर यू कैन यूज एक्सपर्ट हेल्प, सो दैट ये अवेयर हो जाए। एंड अगर आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो आप उन आपके अवेयरनेस द्वारा उनको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है।
1: बिल्कुल, मुझे और एक डाउट था कि

0: मान लीजिए कि थोड़े बहुत पेशेंट मेडिसिन पे चले गए, जैसे आपने होम्योपैथी ट्रीटमेंट बताया, तो उसमें मेडिसिन की जरूरत अगर पड़ती है तो क्या उनको हमेशा मेडिसिन के साथ रहना पड़ता है या फिर कुछ समय के बाद हम ड्रॉप कर सकते हैं?
1: अच्छा, अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करती है तो ये बस जब तक आपको ये सिम्टम्स रहे, जब तक ये आपको तकलीफ है, बस आपको तब तक ही लेना है। इसको कंटिन्यूस लेने की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली होम्योपैथ, अदर मेडिसिन भी, अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी है। ये ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग लेना है।
0: अच्छा,
1: तो जब तक आपके सिम्टम्स क्योर हो जाएंगे, जब तक आपकी ये तनाव कम हो जाएगा, आप मेडिसिन स्टॉप कर सकते।
0: बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था एक्चुअली, और हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि इस एंजाइटी से हम गुजर रहे हैं। तो जैसे आप बार बार फोकस कर रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है इसके लिए, तो ये हमने आज के इस शो के दरम्यान समझाया हमारे लिसनर्स को, और इसके लिए आपने टाइम दिया, सो थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू आपको, एंड आशा करती हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हम सभी व्यूअर्स को लाभदायक हो, और इसका जो सेवा या फैसिलिटीज के लिए में अवेलेबल है, जो सामान्य लोगों को जो उपलब्ध करने की जो हमारी केली सोसाइटी फोकस करती है, सो दिस एंजाइटी इज स्पेशली हमारे युवा पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी इस दौर से गुजर रहा है, आप प्लीज प्रोफेशनल हेल्प कीजिए, या तो फिर आपके जो भी क्लोज मेंबर्स है उनसे बात किए, बस इस सिम्टम्स को अपने तक मत रखिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए एंड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
0: थैंक यू सो मच। ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। मेरे साथ थी डॉक्टर जेसिका मोंटेरो, जो एसोसिएट प्रोफेसर एंड होम्योपैथिक कंसल्टेंट है केली होम्योपैथिक कॉलेज। एंजाइटी एंड होम्योपैथी ट्रीटमेंट, उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। कैसा था आज का एपिसोड मुझे जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। मनीषा फिर हाजिर होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनसु। नमस्कार।
2: KLE ವಿಶ್ವನಾಥ ಕತ್ತಿದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಹಲ್ಲು ಕೀಳುವುದು, ಹುಳುಕ ಹಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಕ್ರದಂತ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಮುಖ ಬಾಯಿ ಹಲ್ಲು ಕುತ್ತಿಗೆಗಳ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸೀಳು ತುಟಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹಳದಿಯಾದ ಹಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕೃತಕ ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ವಸಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ KLE ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕತ್ತಿದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, KLE ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ನೆಹರು ನಗರ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312470362, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9448998

हेलो नमस्कार सलाम आदाब, कैसे हैं आप लोग? लगता है आप लोग मुझे बड़ा मिस करते हैं और आपकी ही याद मुझे खींच कर लाती है हर रोज आपके पास, जहां आप सुनते हैं मुझे यानी आरजे आयुष को हमारे और आपके पसंदीदा शो बी रिलैक्स में, जो आता है ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसू पर, जो कि बेलगावी का सबसे बड़ा और सबसे पहला रेडियो स्टेशन भी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप पर, आपके ड्रीम्स पर, आपके गोल्स पर, एस्पिरेशंस पर। हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सपना जरूर देखते हैं, सक्सेस का, फेम का। आज का ये एपिसोड बड़ा ही नॉलेजेबल होने वाला है और डेडिकेटेड है उन्हीं ड्रीम्स को, उन्हीं एस्पिरेशंस को। साथ ही करेंगे आपका एंटरटेनमेंट, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आपकी कुर्सी की पेटी बांध कर वहीं बैठे रहना है और कर लेना है आपके रेडियो का वॉल्यूम एकदम फुल, क्योंकि भैया मैं बजाने वाला हूं साथ ही आपके लिए कुछ जबरदस्त गाने। तो सुनते रहिए वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

Hello people and welcome back to your favorite show Be Relax and you have tuned into Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu aur main RJ Ayush aapke saath hamesha bana hua hu. Dosto, dreams and goals are the driving forces jo push karte hain kisi bhi insaan ko apne maximize ya maximum limits par kaam karne ke liye aur towards a success or fulfillment ki or. Dreams ek tarah ke aspirations hai jo hamare dilo dimag ki gehrai mein base hote hain. Wahi goals ek tarah ke targets hote hain jo hum set karte hain to turn those dreams into reality. आपकी भी ऐसे कई सारे ड्रीम्स होंगे, गोल्स होंगे जिनको पूरा करने के लिए आप अपनी जी जान लगा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस यूनिवर्स ने कोई सपना दिखाया है, कोई ड्रीम दिखाया है, तो उस यूनिवर्स के पूरे इंटेंशंस है उसको फुलफिल करने के। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कॉन्स्टेंट रहना है अपने हार्डवर्क पर, अपनी मेहनत पर, और फिर देखिए जादू, फिर देखिए कमाल कैसे आप अपने ड्रीम्स को देखते ही देखते पूरा कर लेंगे। इट्स रियल, जस्ट बिलीव इट इन योरसेल्फ एंड योर हार्डवर्क। और जब हार्डवर्क करने के बाद आप थोड़ा सा थक जाए, रिलैक्स होने के लिए आप आइए हमारे पास, यानी हमारे शो बी रिलैक्स में, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, जहां मैं सुनाऊंगा आपको जबरदस्त गाने और करूंगा आपका एंटरटेनमेंट।

हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में। दोस्तों, ड्रीम्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग अवर आइडेंटिटी एंड पर्पस। दे इंस्पायर अस, इग्नाइट अवर पैशन एंड क्रिएटिविटी, गाइडिंग अस टुवर्ड्स समथिंग ग्रेटर देन अवर लाइव्स एंड अवरसेल्व्स। फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल अचीवमेंट, हम लोगों को इसी से एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है, पर्पस मिलता है, जिससे हमारी लाइफ को एक डीपर मीनिंग मिलता है। लाइफ में हर जर्नी पहले स्टेप से ही शुरू होती है और ड्रीम्स एक तरह के ब्लूप्रिंट है इस पहले स्टेप्स की ओर। दे स्पार्क द इनिशियल आइडिया, द विजन ऑफ व्हाट वी वांट टू अचीव। ड्रीम से ही डायरेक्शन मिलती है और गाइडेंस मिलती है टुवर्ड्स द बेटर फ्यूचर। साफ साफ कहूं तो भैया, जो मैंने आपसे अभी कहा उसका मतलब ये है कि सपने देखो, देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे, है ना। तो आप देखो सपने और मैं बजाऊंगा आपके लिए तब तक कुछ जबरदस्त गाने। सुनते रहिए मेरे साथ यानी आरजे आयु के साथ, वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासू।

क्या बात है दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर और मैं आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ, जहाँ हमारी बात चल रही है आज के टॉपिक चेजिंग योर ड्रीम्स पर। दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने ये सपना या ये ड्रीम्स देख तो लिया, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये शायद पूरा होगा कि नहीं होगा। मेरे मन में वो डाउट होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो या फिर कुछ हो ही नहीं पाया तो क्या होगा। तो यार देखो, ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों को सुनिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनकी लाइफ आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर आपको वक्त मिले तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि यूट्यूब पर है, जिसे गुलजार साहब ने बोली, आप उसे सुनेंगे तो आपके मन को एक सुकून मिलेगा, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी और एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे आप अपने सपनों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ। ऑलवेज रिमेम्बर, द फ्लावर्स ऑफ टुमारो विल थैंक द रेन ऑफ टुडे। ये एक बहुत ही सुंदर कोट है जिसका मतलब मैं आपको बताऊंगा आफ्टर सम सुपरहिट सॉन्ग्स। तो आपको कहीं जाना नहीं है, आपको सुनना है मेरे साथ वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसू विद आरजे आयुष।

हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वन मोर टाइम। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4। और दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया हमारे शो को इतना प्यार देने के लिए। कई सारे मैसेजेस और ईमेल्स भी हमारे पास आते हैं, जिसमें बेलगम के सचिन लिखते हैं कि उन्हें हमारा प्रीवियस एपिसोड जो कि फ्रेंड्स ट्रिप्स पर था, काफी पसंद आया और उन्होंने उन्हीं ट्रिप्स को दोबारा प्लान करके अपने दोस्तों के साथ रीयूनियन करने का डिसाइड किया। धन्यवाद सचिन जी। वहीं बेलगम से ही सौम्या कहती है कि दोस्तों के साथ घूमने में जो मजा आता है वो फन और कहीं नहीं है, और वो हमारे शो की एक बहुत बड़ी फैन है और उसे हर रोज सुनती है। थैंक यू सौम्या फॉर योर लवली विशेस। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो कोट मैंने आपसे अभी कहा, जिसका मतलब था कि द फ्लावर्स ऑफ टुमारो विल थैंक द रेन ऑफ टुडे, उसका मतलब ये है कि अगर आज आप कोई तकलीफ फेस कर रहे हैं तो आपकी जो सक्सेस होगी टुमारो, वो आज के स्ट्रगल्स को थैंक यू बोलेगी, ताकि उन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से आज आप जो अचीव कर पाए हैं वो हो रहा है सिर्फ उन्हीं स्ट्रगल्स की वजह से। और अब वक्त हो गया है आपको कुछ सुपरहिट सॉन्ग सुनाने का, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सुनते रहना है वेणु ध्वनि 90.4 FM with RJ आयुष।

बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणुध्वनी 90.4 KLE कनसू। दोस्तों बात करते हैं द आर्ट ऑफ गोल सेटिंग की, कैसे आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। गोल्स आर लाइक साइन पोस्ट अलॉन्ग विद द पाथ टू रियलाइज अवर ड्रीम्स, जो ड्रीम्स के उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके अचीवेबल टारगेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अ ड्रीम विदाउट अ गोल इज लाइक अ शिप विदाउट अ स्टेबिलिटी, इट मे सिंक, डूब भी सकता है, बट इट्स अनलाइकली टू रीच अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। और फिर एक गोल सेट करने के लिए आपको एक स्मार्ट अप्रोच भी लगता है, जो कि स्पेसिफिक, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंडेड हो। और इन्हीं क्राइटेरिया से ये पता लगता है हमारे गोल्स प्रैक्टिसेबल है या रियल में प्रैक्टिकल है या नहीं है। मतलब हम कुछ अनरियलिस्टिक तो नहीं सोच रहे। कभी कभी आप सोचोगे कि भैया मुझे चांद पे जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल गोल्स सोचना पड़ते हैं, या फिर अगर आप चंद्रयान में बैठे हो, मैं मजाक कर रहा हूं। तो अपनी प्लानिंग जारी रखिए और सुनते रहिए हमारे साथ हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणुध्वनी।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर टू योर फेवरेट शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसे जो ऑप्टिकल्स आएंगे अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए आप उनको कैसे पार कर सकते हैं। द जर्नी टुवर्ड्स अवर ड्रीम्स इजंट ऑलवेज स्मूथ एंड सेलिंग, चैलेंजेस एंड सेटबैक्स आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस टेस्टिंग अवर डिटर्मिनेशन एंड रिजॉल्वेंस। आपको वो नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा बनाकर रखना पड़ेगा क्योंकि नेवर गिव अप सिर्फ एक क्वोट ही नहीं है, ये एक तरीके का एग्जीक्यूशन है जो आपको आपकी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। हर बार नेवर गिव अप बोलने से कुछ नहीं होएगा। प्लीज अप्लाई इट इन योर बॉडी, इन योर एक्शंस, इन योर बिहेवियर। दिस इज हाउ यू विल इंप्रूव। सच कहूं तो डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इज द की, सो कीप वर्किंग। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम सुपर हिट सॉन्ग्स, सो स्टे ट्यून्ड टू वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

मधुबनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है यादों के बारात। हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूली 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

गाते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।